तस्मिं समये नाथो मुक्खलानं जगत्सपं खिलाने दुखिते तित्स्वा पोचंके सतते सयी।